है तेरे उमकतान, बल्लभ सर्व बल्लभ आल गई सिंदीर, मगंदे पुगंदे उम्मये उयत्वो, बल्लभ सर्व बल्लभ आल गई सिंदीर, மகிழ்ந்தே புகழ்ந்தே உம்மை.

बनेंगे। टूटू जी की रोम, टू जी की रोम, टू जी की रोम, परी सुतर परी सुतर परी सुतर मेरे।

जादो या तीन जमा हो, मैं भी हाजिर हूँ। दस्तक हो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसकी रूह से अपने जिसने उसे जाना।

कलिया कले लगने जा दो या तीन जमा हो मैं भी हाजिर हूँ, जा दो या तीन जमा हो मैं भी हाजिर हूँ। इतना हसीन वायदाए खुदा खुदावन ने, जा दो या तीन जमा हो मैं भी हाजिर हूँ, जा दो या तीन जमा हो मैं भी हाजिर हूँ। यस प्रभु, जहाँ दो या तीन जमा होते उधर तू प्रभु हमेशा हाजिर रहता।

उसे छाती पीट को सस्ता करे। यस प्रभु, धन्यवाद। कबर कब तोड़ कर बंद ऊपर गया बेजा रुए पा, तुम्हें लेने जल्दी आता है वो तैयार यीशु से मिलने को। कबर काव तोड़ कर बंद ऊपर गया बेजा रुए पा, तुम्हें लेने जल्दी आता है। इस प्रभु तेरे यस मांगते प्रभु, तू ही प्रभु। रात अंधेरी थी, तोबा का दरवाजा बंद होगा, कुछ भी प्रस्थान से मिला। रवि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिए, इसे धन्यवाद करते। इन तेरे में कुछ भी नहीं, क्यों हुआ मुझे तेरे जरूरत है। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत। असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीना। तेरे बिना ये जिंदगी नहीं, तेरे बिना ये जिंदगी नहीं। बेरौनक बेसूरत यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसा जैसे ही अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साए जमा तू जिंदा खुदा, साए जमा तू जिंदा खुदा है, तू ना झूठी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।

दरिया हर फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाए, तो खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।

हम सारे जगत से हो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है। सारे जगत से हो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है।

पाते, बीमार उसको सोकर चंगे होते, पापी उसके नाम से उद्धार पाते है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासी को लेकर जाने वाला है, बादलों में साथ यीशु आने वाला है, विश्वासी को लेकर जाने वाला है, सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है, झूठी प्रशंसा है हमारे यीशु की।

बदलो में यीशु आने वाला है, विश्वासी को लेकर जाने वाला है, सारे जगत से प्यार करता है, आनंद जीवन सबको देता है। यस प्रभु, तू सारे जगत से प्यार करता है प्रभु, तू विश्वासी को लेकर जाने वाला है प्रभु, उसके तेरे साथ कितना आनंद है, तेरे साथ आनंद करना कितना सौभाग्य है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा करते, धन्यवाद प्रभु।

ये यस प्रभु, तेरी स्तुति करना कितना सौभाग्य प्रभु, तेरे साथ समय बिताना कितना हमारा सौभाग्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते राजा, मांगते प्रभु सहायता करना।

यस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे गुनाहों की तूने सजा ली, चाबुक का मार तूने सहा, कांटों का ताज तुझे पहनाया गया प्रभु। हमने तुझसे क्या क्या दिया प्रभु? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तूने हमारी सजा ली और हमें हमसे प्यार किया प्रभु। ऐसा बड़ा वायदा तूने हमसे किया प्रभु, हमारे पापों को लेकर, हमारी सजा को सहकर। कोई हमसे इतना प्यार नहीं कर सकता, लेकिन तूने हमसे इतना प्यार किया प्रभु। हमने सबने हमको ठुकरा दिया था, सबने हमारी निंदा की, सबने हमने भला बुला करा, लेकिन तूने अपने भाव में मिल लिया प्रभु। हम तेरा इस रात के समय धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तूने हमारी सजा ली, हमें बदल दिया, हमारे जीवन में तूने कार्य किया, हमारे परिस्थिति में तूने कार्य किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हर एक बहन भाइयों को तेरे हाथ में देते। आज कई लोग मुश्किल में है, गड़बड़ी में है, हर अवस्था में हर प्रश्न लेके चल रहे प्रभु, लेकिन प्रेतराज वचन कहता है, मैं तुम्हारे आंसू को पोछूंगा, मैं तेरे बंधन को ले लूंगा, हर दर्द को ले लूंगा। तू हमें चंगा करना चाहता है, तू हमारे जीवन में हमें आशीष देना चाहता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व को हटाकर तूने हमको नया मनुष्य को पहनवाया, नई सामर्थ से भरा, नई चीजों से भरा प्रभु। हम मांगते प्रभु आज रात के समय, हमारे हर एक बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करते, जो पीड़ा में है, दर्द में, श्रापों में, बंधन में पड़े हैं, सबको आजाद करते प्रभु। तेरा वचन आज कहता है, मैं आजाद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, हर पीड़ा से बाहर निकालूंगा, हर बंधन से बाहर निकालूंगा। तेरा प्रभु आज पवित्र तेल से, तेल का अभिषेक हमारा होने दे, हमारा नया मेल मिलाप होने दे प्रभु। तू नई सृष्टि हमारी की प्रभु, तू नया हमें बनाया प्रभु, तेरे तेरे मार्ग अनुसार हमें चलाना, तेरी इच्छा अनुसार चलाना। हमारा जीवन तेरे ही हाथ में प्रभु, हमारी परिस्थिति तेरे हाथ में, इसलिए प्रभु सहायता कर, मदद कर। आज कितने लोग हजार पड़े, आशीर्वाद करना उनको, तेरे उसी ढाप दे कर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर वातावरण के लिए धन्यवाद, हमारे उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यस प्रभु, धन्यवाद करते, पूरा समय हम तेरे हाथ में देते, हम समर्पित करते अपने आप को तेरे हाथ में। हमारी रक्षा करना, हमारे बंधन टूट गए, हमारी निराशा हट चुकी। हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, हर एक बहन भाइयों को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर प्रभु, तेरे लव से ढाप रहे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यस प्रभु, धन्यवाद करते इस रात के समय के लिए, धन्यवाद करते हमारे कलिशों को तेरे हाथ में देते प्रभु। हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में पुराना मनुष्य को हटा कर नया मनुष्य को पहना दे प्रभु, तेरे लव से ढाप दे। तू जैसे यहोशू के साथ था, वैसे तो आज हमारे साथ था, तू मूसा के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। आज हम एक मन को प्रार्थना करते, तेरे उसे ढाप दे, तेरे सामर्थ्य से ढाप दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते। हमारे एसपी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में जितने सुबह से लेकर शाम तक प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन आकर तेरी महिमा करते, स्तुति करते, तेरे आशीर्वाद मांगते प्रभु। सहायता कर, हमें भर दे पवित्र आत्मा, सामर्थ से भर दे, तेरा अनाउंटिंग का अभिषेक मांगते, तेरे सामर्थ के अभिषेक में दे,
तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे सभी के अंदर बह रही है। तूने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया प्रभु, आज हम मांगते सहदा कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हर बातों के लिए धन्यवाद, हर पड़ाव के लिए धन्यवाद, हर बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। मंजू माँ का ताबा, उसके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री का ताबा, इस मिनिस्ट्री को बढ़ने के लिए मदद कर। हर कोई प्रभु होने दे प्रभु, तेरी इच्छा हमारे सभी के जीवन में पूरा होने दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आई हम वचन की तरफ जाते, आज का वचन ही आज हम देखेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रभु का सामर्थ्य हाथ हमारे सबके ऊपर बना रहा है, हमेशा बना रहे। आज हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 39 उसका 3रा वचन। प्रभु का हाथ हमारे सबके, दाविद के ऊपर भी प्रभु का हाथ था, यहोशू के ऊपर भी हाथ था, और आज वही हाथ हमारे और आपके पास ऊपर भी है। हम देखेंगे कि प्रभु कुछ वचनों से हमें आशीषित कर। आइए प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और वचन की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस वचन के अनुसार हमें से बात देकर, हमें मदद कर प्रभु, क्योंकि तू ही हमें सिखा सकता है, तू ही हमारे पड़ाव से हमें आजाद कर सकता है प्रभु। आइए हम निकालते हैं भजन सब उत्पत्ति का 39 का 3रा वचन पढ़ते, हम देखेंगे उसमें कि किस तरह प्रभु यहोशू के साथ बना। 39 का हम पढ़ेंगे 3रा वचन से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो यहाँ यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था प्रभु की, प्रभु का सामर्थ्य हाथ उसके ऊपर हमेशा था। कई लोगों ने उसको तकलीफ दी, फिर भी उसका हाथ हमेशा प्रभु ने, जब प्रभु हमारे ऊपर हाथ रखता है तो कौन भी हमारा जीवन खराब नहीं कर सकता है। इधर यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके भाइयों ने, उनके लोगों ने, बहुत लोगों ने उसको तकलीफ दी, लेकिन प्रभु का हाथ हमेशा उसके साथ बना रहा है। आज हम देखेंगे, देखो 3रा वचन क्या कहते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संगी था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखो इधर पहली बात क्या प्रभु इधर बता रहे यूसुफ के बारे में, कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में था, उसके भाइयों ने उसको तो बेच डाला था, तभी उसको पोतीपर ने अपने घर ठहराया, उसको लेके गया, क्योंकि पोतीपर ने देखा कि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और इसके साथ साथ मेरा भी भला होगा, ऐसा इधर कहा गया है। पहली बात तो यही कह रहे हो, क्या कह रहा है यूसुफ अपने मिस्र के स्वामी में। यूसुफ अपने, दूसरा वचन पढ़ते, यूसुफ मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। वो मिस्री के घर में रहता था लेकिन परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर था? यूसुफ के ऊपर था। आज जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए, तो परमेश्वर का हाथ हमारे सबके ऊपर है, तब परमेश्वर का सामर्थ्य का हाथ जरा हमारे ऊपर होगा तो प्रभु हमें हर हर बातों में आजाद कर सकता है, हर परिस्थिति में हमें आजाद कर सकते हैं, हर निराशा से हमें आजाद कर सकता है। देखो यहाँ 3रा वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या, पहली तो बात क्या बोलते हैं, प्रभु का हाथ यूसुफ पर था, और दूसरा वचन क्या, 3रा वचन कहता है यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ रहता है। देखो उसके स्वामी ने देखा
कि इस बंदे के ऊपर तो परमेश्वर का हाथ है, इसको तो मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी किसी के पास कोई चीज होती है तो हम उसका उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, उसको पकड़े रहते, क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए होता है। वैसे स्वामी को भी यूसुफ से कुछ चाहिए था। उसने उसने देखा कि इसके साथ परमेश्वर है, तो ये बंदे के साथ मैं रहूंगा तो इसके साथ मेरा भी भला होगा। अभी यहां देखो क्या परमेश्वर बोल रहे तीसरे वचन में। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहा, और वो काम वह करता, और जो काम वह करता है उसको यह उसके हाथ में सफल कर देता है। आज हम भी परमेश्वर के कामों को पूरा करने की चाहत करते हैं और करते हैं, तो प्रभु हमारे हर एक कामों को सफल करेगा। तब उसका अनुग्रह तब उस उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने अपने घर को घर के अधिकारी बना बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उस स्वामी को इतना विश्वास हुआ, उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। अभी एक नौकर के हाथ में कोई कोई देता है क्या? नहीं, क्योंकि अपने मालिक को तो पहला डर होता है अपने पैसे का, अपने घर का, अपनी चीजों का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के एक स्वामी अपने दास दास को सब कुछ दे सौंप देता है, उसने उसको अधिकारी बनाया। आज परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो प्रभु हमारे जीवन में क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमें विश्वास करना है, हमें प्रभु के रास्ते पे चलना है। यूसुफ प्रभु के साथ चला, जहां जहां वो गया प्रभु उसके साथ था। जिधर उसने हाथ डाला उधर परमेश्वर उसके साथ था। उसको हर हर काम करने का ज्ञान बुद्धि उसने दिया। आज परमेश्वर हमें और आपको भी प्रभु ऐसा ही करना चाहता है, जो यूसुफ को दे सकता है तो क्या तुम्हें और हमें प्रभु नहीं दे सकता है? दे सकता है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का। भजन संहिता का हम 128 का वचन पढ़ेंगे, उसमें एक और दो वचन पढ़ेंगे। भजन से सोम चैप्टर 128 वर्स 1 एंड 2। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। भजन संहिता 128 उसमें एक और दो। क्या ही धन्य हर एक जो यहा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही रहेगा। देखो उधर यूसुफ के साथ प्रभु रहता है, उसके सारे कामों को सफल करता है, और यहाँ परमेश्वर दाविद से भी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर का भय मानेगा वो आशीषित होएगा। उसके सारे मार्गों पे जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तो वो अपनी कमाई के नीचे खाने पाएगा और प्रभु उसको सफल करेगा। और जिनके घर की स्त्री तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री भी फलवंत होगी। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है प्रभु। जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ने उसके घर की स्त्री को भी प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। क्या बोल रहा है? वो फलवंत होगी, वो बांझ नहीं रहेगी, उसको कभी पीड़ा नहीं होगी, उसके सारे आशीर्वाद प्रभु प्राप्त करेगा। कब कब?
जर हो अपनी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है, उसका भय मानती है, तो परमेश्वर उसके सारे कामों को सफल करेगा। और दूसरी बात इधर क्या बता रहा है, तेरे मेज और चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। देखो तेरे बच्चे ऐसे होंगे जैसे झाड़ को पौधा उगता है तो वो कितने सारे फल उत्पन्न कर देते हैं, वैसे उस स्त्री के घर में भी होंगे, वैसे तेरे उसके नहीं सिवन हमारे और आपके घर में भी ऐसे फलवन फल उत्पन्न होंगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसे फल प्रभु निर्माण करना चाहता है, हमें ऐसे ही प्रभु आशीर्वाद करना चाहता है। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, 37 सोम उसका 3 और 4, भजन संहिता 34 उसका 37 उसका 3 और 4 पढ़ते। 3 और 4 पढ़, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह तो सच्चाई से मन लगाए रह, यह को अपने मुख का मूल जान, यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, अपने मार्ग की चिंता यहाँ पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। देखो 3 बातें प्रभु इधर बता रहे हम सबको आज। पहला तो प्रभु कह रहा है इधर उधर, यहोशी से प्रभु बात करता है, उसके ऊपर प्रभु उसका हाथ बनाए रखता है, फिर प्रभु दाविद के ऊपर भी हाथ बनाए रखता है। जो परमेश्वर के मार्गों पे चलता है उसको भलाई होगा, उसकी घर भी घर की स्त्री भी फलवंत होगी। इधर दूसरी बार प्रभु दाविद से प्रार्थना करता है, क्या बोलता है, मुझ पर भरोसा रख और तेरा भला होगा और तेरे देश में तू बसा रहेगा और सच्चाई पर मन लगाएगा, यह को अपने मुख का मूल जान, तेरे मनोरथों को आज हमारे मनोरथों को प्रभु ही पूरा कर सकते हैं, हमारी चिंता हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देनी है, क्योंकि उस पर ही हम भरोसा रख सकते हैं और वही हमारा पूरा करेगा, वही हमारे परिस्थिति को। आज आपके और हमारे पास बहुत सारे प्रश्न है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिस्थिति के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, प्रभु हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। वो हमें पुराना स्वभाव निकाल कर हमारे ऊपर नया स्वभाव डालना चाहता है, बिगड़ी हुई चीजों को प्रभु सही करना चाहता है। आज हमारा जीवन में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु आज कह रहा है आपको और हमें कि प्रभु बदलना चाहता है। जो वो यूसुफ को आशीर्वाद कर सकता है, यूसुफ के द्वारा उसके स्वामी को आशीर्वाद कर सकता है, तरह हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे द्वारा जब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर होगा, तरह हजारों लोगों को जो प्रार्थना कर रहे उधर उत्तर आएगा, लोगों के जीवन में महान महान काम होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, ऐसा आज का वचन कहता है प्रभु। प्रभु कहता है इधर लास अपने मार्ग की चिंता यहाँ पर हमें सौंपना है, मनुष्य के ऊपर नहीं, क्योंकि मनुष्य हमें कोई भी सांत्वना नहीं दे सकता है। हमारे परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमारा सब कुछ प्रभु के हाथ पे हमें सौंपना है आज, और प्रभु हमारे मुख का मूल जान लेगा, हमारी चिंता से वो हमें बाहर निकालेगा, हमारे परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगा। जो वो यूसुफ के साथ था वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, जो परमेश्वर मुस के साथ था वही आज हमारे साथ है,
जो परमेश्वर अब्राहम के साथ था वो आज तुम्हारे हमारे साथ भी है। आइए हम आंखें बंद करते और अपने परमेश्वर के हाथ में अपनी सारी बातें रखते हैं, क्योंकि वो ही हमें तसली दे सकता है और वो ही हमें उत्तर दे सकता है। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते राजा इस सुंदर समय के, इस वचनों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जिस तरह तूने यहोशू के ऊपर अपना हाथ बनाए रखा, तेरे सामने तू उसके संग रहा प्रभु, जहां जहां वो गया वहां वहां तू उसके साथ रहा, वैसे ही तू आज हमारे साथ भी रहे प्रभु, हमसे बातें कर, हमारे पुराने खमीर को निकाल कर हमारे अंदर तेरा अच्छे खमीर डाल दे प्रभु, पुरानी बातें हटाकर हमारे जीवन में तेरा वो पवित्र तेल से हमें भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु, तेरे सामर्थ्य से भर दे, और हमारे लोगों को आशीर्वाद कर, हमारे बहनों को आशीर्वाद कर। आज कितनी बहनें पीड़ित है, गरबा का फल प्राप्त करने के लिए रुकी हुई है, बीमार चंगे होने के लिए रुके हुए, बच्चे पढ़ाई के लिए रुके हुए, देशों में शांति नहीं करके शांति के लिए रुके हुए प्रभु, आज हर कई गड़बड़ी प्रभु, और आज हम मांगते इस रात के समय प्रभु, हमारे लोगों के ऊपर दया कर प्रभु, मेरी अवस्था को तेरे हाथ में देते, मेरे पति की अवस्था को तेरे हाथ में देते, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, हर एक परिस्थिति में तू कार्य कर प्रभु, हमें आपकी जरूरत है, तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे बिना अधूरा है सब कुछ प्रभु, लेकिन आज इस रात के समय हम मांगते हमारे हर एक बेटियों के जीवन में कार्य कर, जितनी बेटी है बांस की दबी हुई है प्रभु उन्हें तो आशीर्वाद कर, कितनी बेटी शादी के लिए रुकी हुई है प्रभु उनके उन्हें अच्छे जीवन साथी से आशीर्वाद कर, बच्चे पढ़ाई के लिए रुके, नौकरी के लिए रुके, अपने आने वाले भविष्य के लिए रुके हुए, ऐसे सारी अवस्था को प्रभु आज हम तेरे सामने रखते, हमारे लोगों की उपदया कर, हमें आशीर्वादित कर प्रभु, हर हमारे इस्तेमाल कर प्रभु, हमारी प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे प्रभु, हमारे हर बेटी की प्रार्थना सुन ले प्रभु, ऐसा आज हम प्रार्थना करते, मेरे पति का ताबा तेरे हाथ में देते, हमारे हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में देते, निर्मला सिस्टर भी को तेरे हाथ में देते, ओ प्रभु अपने माँ के मिलने गई है प्रभु, उसके सद तू रहना, उसको आशीर्वाद करना, मंजू माँ का ताबा, उसकी बेटी का ताबा भी तेरे हाथ में देते, उसके भी संतान होने के लिए मदद कर, उसके जीवन में कार्य कर प्रभु, हमारी इस मिनिस्ट्री को बढ़ने के लिए मौका दे, हजारों लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके प्रभु, जितने लोग पैरालाइज में पड़े उन्हें तो आजाद कर दे, जितने कोड़ी में बंधन में उन्हें शुद्ध कर दे प्रभु, जिनको आंखों में आंखों की बीमारी है उसको हटा दे, कई लोग कैंसर से पीड़ित है, ट्यूमर से पीड़ित है, ऐसे सभी लोगों को तेरे हाथ में देते प्रभु, तो सहायता कर, मदद कर, तेरे अनुग्रह का सामर्थ्य हमारे ऊपर आने दे, तेरी आग से हमें भर दे, तेरे अभिषेक से हमें भर दे प्रभु, हमें ठंडे मत रहने देना प्रभु, हमेशा गर्म रहने देना, हमेशा लोगों के लिए उत्साहित होने का आत्मा हमारे ऊपर आने दे प्रभु, लोगों के लिए प्रार्थना करने का आत्मा हमारे ऊपर आने दे, तेरे प्रिंस सोनल का ताबा भी तेरे हाथ में देते, उसके भी जीवन में कार्य करना, तुझे सम्मान करने के लिए मदद करना, तेरा आदर करने के लिए उसको मदद करना प्रभु, ऐसे में प्रार्थना, मेरे से जो कुछ भी भूल चुक हो गई तो मुझे क्षमा करना प्रभु, मेरी सारी अवस्था तेरे हाथ में दी प्रभु, तू ही मुझे मार्गदर्शन कर, तू ही मुझे चला, मेरे जीवन में आशीर्वादित करना, मुझे फलवंत बनाना प्रभु, मेरे अंदर भी फ्रूट उत्पन्न होने के लिए मदद कर, मैं तेरे राज्य की सेवकाई करने में मुझे मजबूत कर, मेरी हर अधूरी बातें पूरी करने में मेरी मदद कर प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करती प्रभु, यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर तमिलनाडु, ब्रदर नंदू,